पढ़ें बस समर्थ शास्त्र जी, कर करे अखट कर्म करंता। से भगत पले जन नानक जी, जो पावे मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख अपरंपर करता जी, तुझ जे वड़े अवर न कोई। तू जोग जोगे को सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई।

सर जी सब कोई। जान नानक गुण गावे करते के जी, जो सबसे का जानोई, आसा महला चौथा।

रहो। सब तेरे तो सबने त्याया, जिसनों कृपा करें तन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़े आया मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़िया संजोगी मेल। जिसनों तू जाने सोई जन जाने, हर गुण साध ही आख बखाने। जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

अपनी पई परापत मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की ये तेरी बरिया। अवर काज तिरक तै न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। सरंजाम लाग पवजल तरण कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाओ। जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, शरण परे कीरा खो शर्मा, कबियो बाच बेनती चौपाई।

हमरे दुष्ट सबै तुमकावो, आप हांत मोय बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा।

ऐसा तुम्हें शाड कोई अवर ना ध्याओ, जो बर चहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारियां, चुन चुन शत्रु हमारे मारियां। आप हाथ दे मुझे उबरे है, मरण काल का त्रास निवरे है। हो जो सदा हमारे पच्छा, श्री अस्तु जो करे और अच्छा।

पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर भीषण प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा।

कलमों बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पार कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछान, काट काट के पाट पाट की जान। जाबुद करख करा करतारा, प्रजा तरत तब दे आपारा, जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ।

ताको कृपा हनन मानत महामूढ़ कछु भेद ना जानत महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चिन्ह तन पेव।

रच देने। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ समट भयो शंकर कैठा। सगरे श्रेष्ठ दिखाए चंपव, आज जुगाद स्वरूप से अंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बारे सिख संघरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुझ तव शरणे परे, तिन के दुष्ट दुगत है मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिन के तुम संकट सब टारे। जो काल को एक बार ते आए हैं, ताके काल निकट नहीं आए हैं। रचा होए ताए सब काला, दुष्ट अरिष्ट ट्रै तत्काला। कृपा दृष्ट त जाए न हरे हो, ताके ताव तनक मो हरे हो। रिद सिद्ध कर मो सब होए, दुष्ट शाह सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फांस ते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दार्द दुष्ट दुख ते रहा।

सवैया। पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं अन्यो। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक हैं मत एक न मान्यो। सिमरत शास्त्र वेद सब है, बो भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री स्पान कृपा तुमरी कार, मैं ना कहे हो सब तोय बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गए हो तुहारो द्वार। बाएं गहे की लाज वास, गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सत गुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए, सत गुरु मैं पाया, सत गुरता पाया सहज सेती। मन वजियां वाधाइयां।

दारुम वाजे पांच शब्द तित कर सभागे, कर सभागे शब्द वाजे, कला जित कर तारिया, पांच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कहो, से नाम हर कै लागे, कह नानक तां सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड भागियो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुने सच्ची बाणे, संत साजन पै सरसे, पूरे गुर ते जाने।

ताम संसार चरण लग तरिया सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवा। तेरा कीता जातो नाहे मैनू जो की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाहे आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया। नानक ना मिले ता जीवा तन मन थी वे हरिया। तरस पया मेरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया। नानक ना मिले ता जीवा तन मन थी वे हरिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर तो मात पिता हम तुमरी कृपा में कोई ना जाने ऊंचे ते ऊंचा। सगल समग्री तुमरे सूत्र तुम ते हो सो तुमरी गत मित तुम्हें नानक दास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासी हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै करनौ निधा वेताए सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहान साहिबजादियां चालिया मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। देख चलाई तेग वाही देख के अंडिठ कीता तना प्यारिया सच्यारिया दी कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी। जिन्ना सिंघा संगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े। आरिया नाल चराए गए गुरद्वारिया दी सेवा ली कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुआसां नाल निभाई। तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी। पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरध की पैज पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर जी दे इशनान। चौकियां झंडे बंगे जुगो जोगे अटल धर्म का जयकार खालसा जी बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मादा रख आप वाहिगुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वारिया गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दी दार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे माण। निताणिया दे ताण निवटिया दी ओट सचे पिता वाहिगुरु आप जी दे पावन पवित्र चरण कमला पास। अरदास बेनती जोदड़ी प्रार्थना है पातशाह जी आप जी दे हजूर संध्या समय नूं मुख रखद्या। शब्द चौंकी उपरंत सो दर रहराज साहब जी दी पावन बाणी दे जाप कीते गए समुची सेवा निभाउंदियां हुईयां बेअंत भुल्लां चुक्कां दी खिमा।
ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕਦਮ ਕਦਮ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਣਾ। ਮਨੋਕਾਮਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਧੀਰਜ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬਹਿ ਚਲਾਇ, ਸਭ ਸਿੱਖਨ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਬੋਚ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਆ ਕੀ ਰਹਿਣ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲੇਂਗੇ, ਬਚੇ ਸ਼ਰਨ ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

नायक कसम हमारे, निमख निमख तुम ही प्रतपालो, हम बारिक तुमरे तारे, जेवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत ना किन ही लहिए रहाओ।

हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपन बिरद रखावो। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक कर के गोले। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सज्जन सुहेले।

0: साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड़ी है खात पढ़ी है जेती बरस बरस पढ़ी है जेते मास पढ़ी है जेती यार जा पढ़ी है जेते सास नानक लिख है एक गल पुर हो मैं चखना चाख महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीर्थ भविया ते तो लविया।

राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनहार, कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहननहार, कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार, कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए खार, कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता, किस नल की जय दोस्ती सब जग चलनहार। हार

स्वामी सच में अच्छे सच रहे, सब को सच समा वेरे कह दिया प्रभुर। राम नाम देवा मैं सूर, नाए ले प्राशित जाए, नानक तो मुख अंतर पाए, जुज में जोर चली चंद्रावल, कान कृष्ण जादम भया, पार जात गोपी ले आया, बिदरा बन में रंग किया, कल में वेद अथर बन हुआ, नाव खुदाई अलहो पया, नील बस्तर ले कपड़े पहरे, दुर्ग बठाणी अमल किया, चारे वेद होए सच्यार, पड़े गुणंत्र चार विचार, पाओ भगत करनी जिस दाई।

शरण जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुरु रामदास राखो शरणाई, जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालक, हाजरा हजूर जारा जहूर शब्द गुरु। बाणी के बोहेथ अमृत के दाते, दसां पातशाहियां दी जोत, साहब सच्चे पातशाह सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज, तिन्हां दी पावन पवित्र ते मुकद्दस हजूरी विच अमृत वेले तों सज्जे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे सन्मान योग सत्कार योग सतसंगी जनों, सतगुरां ने बड़ी अपार बख्शिश रहमत कीती है, आप सब गुरदेव की पावन हजूरी विच जुड़ बैठ के गुरु करके रागी सिंघां पासों धुरकी बाणी दे पावन कीर्तन श्रवण कर रहे सी। उपरंत सत्कारयोग भाई साहब जी ने गुरु चरणा विच सरबत दे भले दी अरदास करके अज दा जो पावन पवित्र मुखवाक है वो आप संगत दे नाल सांझा कीता है। तो आओ साध संगत, समा है मुखवाक दी विचार दा। जिन्ने शरीर आप सतगुरां दे हजूर बैठे हो जां घरां विच मीडिया दे माध्यम राहीं श्रवण कर रहे हो, फतेह दी सांझ पाईए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सूई राग विच पंजवें पातशाह धन गुरु अर्जन साहब दा ये बचन गुरु ग्रंथ साहब जी दे अंक 746 ते 47 दे उत्ते सुभायमान है। धन गुरु अर्जन साहब महाराज ने ये जिहड़ा दुनिया दा सागर है जिन्हों आपां संसार सागर कहिंदे आ, इस तों किवें पार उतरिया जा सकदा है, किवें इस दुनिया दे सागर दियां लहरां जो बंदे नूं वहा के लै जांदियां ने, जिहदे अंदर बंदा डुब रहा है, इस तों बचा दी जुगत की है, वो महाराज ने अज दे इस पावन शब्द विच सानू समझाया है। संसार नूं सागर दे नाल तरजीह बहुत वार गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच दित्ती गई है। जिवें समुंदर कदी शांत हुंदा है, कदी अपने विकराल रूप दे विच हुंदा है, उहदियां लहरां जिवें मनुख नूं वहा के अपने अंदर लै जांदियां ने, बड़ा भयानक है, खतरनाक है वो मंजर। इसी तरह ये जिहड़ा संसार है जिथे असी वसदे हाँ, इत्थे भी वन सुवन्नियां लहरां उठदियां ने, वो लहरां बंदे नूं रोड़ के लै जांदियां ने। लोभ दी लहर है, हंकार दी लहर है, किन्ने तरह दियां लहरां ने। गुरदेव हजूर महाराज कहिंदे ने, लोभ लहर अत नीजर बाजै, काया डूबै केशवा। लोभ दियां लहरां इन्नियां डूंघियां ने, उहदा बोलबाला इन्ना ज्यादा है कि शरीर मेरा उहदे विच डुबदा जा रहा है। फिर गुरदेव सिद्ध गोष्ठ दे विच ये वचन रखते ने भी दुनिया सागर दुतर कही है, क्यों कर पाई है पारो। ये जिहड़ा दुनिया दा सागर है ये दुतर है, इहनू तरिया नहीं जा सकता। हुण पार लंघना है तो उहदी जुगत की है, उहदा तरीका की है। जिवें असीं बाहरी तौर उत्ते किसी दरिया समुंदर नूं पार करना होवे तो उहदे लई कश्ती की लोड़ पैंदी है, ते कश्ती भी जिहड़ी है उह लक्कड़ दी, नाव जिहड़ी है उह पत्थर दी नहीं हो सकदी। जे कोई बंदा इस गल दा माण करे कि मेरे कोल जिहड़ी पत्थर दी नाव है उह बड़ी मजबूत है, ये कश्ती बड़ी मजबूत है, पर महाराज कहिंदे ने, पाहण नाव ना पार ग्रामी, पाहण पत्थर दियां बेड़ियां कदी बंदे

फिर गर्भासु ना पर्यारे। वाहिगुरु जी गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवां। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै बिरोलै नीर। ऐसो अचरज देखियो कबीर, दद कै भोलै बिरोलै नीर। रहाओ हरी अंगूरी गदहा चरै, नित उठ हासै हींगै मरै। माता भैंसा अमोहा जाए, कुद कुद चरै रसातल पाए।

होए, जिस को पूर्व लिख्या तिन सतगुर चन गहे, सफल मुर सफला करी, जिस सच्चे नाल पेहार, दुख संताप न लगई, जिस हर का नाम आधार, बाँ पकड़ गुर काढ़िया, सुई उतरिया पार, थान सुहावा पवित है, जिथे संत सभा ढोई तिस ही नौ मिले, जिन पूरा गुरु लवा, नानक बद्दा कर तहां, जिथे मेरत न जन्म जरा, श्री राग महला पंजवा, सोई त्याये जीयड़, शिर शाह पातशाह, तिस ही की कर आसमान, जिसका सब सवसाह, साब स्यानपा छड के, गुर की चरणी पाह, मन मेरे सुख सहज सेती जपनाओ, आठ पहर प्रभत है तू, गुण गोविंद नित गहाओ, राहाओ तिसकी सरणी परमना, जिस जेवड़ अवरना कोय, जिस सिमर सुख हुए कना दुख दर्द न मूले होए, सदा सदा कर चक्री प्रभ साहिब सच सोए, साध संगत निर्मला कटिया जमकी फास, सुख दाता पे पंजनो तिस आगे कर अरदास, मेहर करे जिस मेहरबान ता कारज आवे रास, बहुत बद बखाणिए ऊचो ऊचा थाओ, वरना चेहना बहरा कीमत कह न सकाओ, नानक कहो प्रभ मयाकार, सच देवो अपना नाओ, श्री राग महला पंजवा, नाम त्याए सो सुखी तिस मुख उजल होए, पूरे गुरते पाइय परगट सबनी लोए, सा संगत के कर वसै को सचा सोए, मेरे मान हर हर नाम त्याए, नाम सहाई सदा संग आगे लय छाए, राहाओ दुनिया किया बड़ी हैया, अवर कव काम माया का रंग सफिका, जातो बिनस निदान जाके हृदय हर वस, सो पूरा प्रधान साधु की हो रेनुका, अपना आप त्याग उपाम सयानप सगल छड, गुर की चरनी लाग, जिस प्राप्त रतन हुए तिस प्राप्त रतन हुए, जिस मस्तक हो वह भाग तिस प्रभत भाई हो, जिस देव प्रभ आप, सतगुर की सेवा सो करै, जिस बिनस होमै ताप, नानक कहो गुर पेटिया बिनस सगल संताप, श्री राग महला पंजवा, एक पछाणु जी का इको रखन हार, एक सकामन आसराहा इको प्राण आधार, ते सरनाई सदा रहो, सुख पार ब्रह्म करतार, मन मेरे सगल पाप त्याग, गुरपुरा आराध नित एक सकी लिव लग रहाओ, इको भाई मित एक, इको मात पिता एक, सकी मन टेक है, जिन जियो पिंड दिता, सो भ्रमण न बिसर, जिन सब किश वस कीता, कार इको बाहर इको थान थनंतर आप, जी जन सब जन किए अठ पह तिस जाप, एक सेती रत्या ना होवि सोग संताप, पार ब्रह्म प्रवेक है दूजा नाही कोई, जियो पिंड सब तिसका जो तिस भवै सो होए, गुर पूरा पूरा भया जाप, नानक सचा सोए, श्री राग महला पंजवा, जिन्हा सतगुर स्यों चेत लाया से पूरे प्रधान, जिनको आप दयाल होए तिन उपज मन ज्ञान, जिनको मस्तक लिखिया तिन पाया हर नाम, मन मेरे एको नाम तिहाए, सा सर्व सुखा सुख उपजा, दरगह पैदा जाए, राहाओ जन्म मरण का पौ गया, पाव भगत गोपाल, साधु संगत निर्मला आप करे प्रतपाल, जन्म मरण की मालक कटिए, गुर दर्शन देख निहाल, थान थनंतर रव रहा, पार परम प्रभ सोए, सभना दाता एक है, दूजा नाही कोए, तेसर नाही छुट्टिया, गुरु कीता लोड़े सो होए, जिन मन बसया पार ब्रह्म से पूरे प्रधान, जिन की शोभा निर्मली प्रगट पई जहान, जिन्हें मेरा प्रभ त्याया, नानक तिन कुरबान, श्री राग महला पंजवा, मिल सतगुर सब दुख गया, हर सुख वस्या मन आए, अंतर ज्योत प्रगासिया एक सोले विलाए, मिल साधु मुख उजला पूर्व लिखिया पाए, गुण गोविंद नेत गवन्ने निर्मल साचा नाए, मेरे मान गुर शब्दी सुख होए, गुर पूरे की चाकरी बिरथा जाए न कोई, राहाओ मन के इच्छा पूरिया, पाया नाम निधान, अंतर जामी सदा सांग, करना हर पछाण, गुर परसादी मखुजला, जब नाम दान स्नान, काम कदलो बिनसिया।

तेरा संग संभाव हर जपिय आराधी है। आठ पैर गोविंद जी प्राण तन तन रखे कर कृपा राखी जिंद। नानक सगले दुख उतारिन प्रभ पार ब्रह्म बख्शिंद। श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी ते सच सो मरन आवत जाए। ना बिछोड़िया विछड़ सब मैं रहा समाए। दीन दर्द

संत संतोख दया कमावे, यह करनी सार। आप छोड़ सब हुए रेना, जिस दे प्रव निरंकार, जो दिशा सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर भरम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुखिरत सुकिरत मदे संसार, सग सगलाना

स्वामी तू वड पुरख सुजाना रहाओ, मान अब महान मंदे सो सेवक नाही, तत् समंदर सी संतो कोई कोट मंदाही, कहन कहावन।

पंजवा कर सतमान तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लड़ाया भूले चुके मारक तू हर पिता माया सुहेला कहन कहावन तेरा बिखम पावन रहाओ हो मान तान करो तेरा हो जानो आपा सभी मद सब है ते बहता बहर बाहर बेमुताज बापा पिता।

पंजवा गुर परमेश्वर पूजिए मन तन लाए प्यार सतगुर दाता जी का सबसे दे आधार सतगुर बचन कमावणे सच्चा इहो विचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब सार मेरे साजन हर हर नाम सुमाल साधु संगत मन वसे पूर्ण हो वह काल रहाओ गुर सुमराथी पार गुर बड़ पागी दर्शन होए गुर अंगोचर निर्मला गुण जीवन अवर ना कोए गुर करता गुर करनहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किछ नहीं गुर कीता लोड़े सो होए।

हर नाम दे उदरे सब संसार, गुर सुमरत गुण निरंकार, गोरे ऊंचा गामे पार, गुर की महिमा गम है क्या कथे कथनहार, जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सत गुर पास, पूर्व लिखे पावने साच नाम दे रास, सत गुर

जापे वाए जिसनो वाए सुनाई है सो केवड़ कित थाए आखण वाले जेतड़े सब आखरे लिवलाए बाबा अल है अगम अपार पाकी नाहीं पाकू थाए सच्चा परवदगार रहाओ तेरा हुक्म ना जापी कितना लिख न जाने कोए जेसो सायर मिली है तिल ना पुजावै रोए कीमत किने न पाईया सब सुन सुन आखे सोए पीर पैगामर सालक साधकु सोंदे और शहीद शेख मसायख काजी मुल्ला दरदरवेश रसीद बरकत तिन को अगली पढ़दी रहन दरूद पुछना साजे पुछना टाहे पुछना दी वैले अपनी कुदरत आपे जाने आपे करन करे सबना वेखै नजर कर जे पावे तैं दे थावा नाम न जानी है नावा केवड़ नाओ जिथे वसै मेरा पातशाह सो केवड़ है थाओ अंबड़ कोई ना सुकई हो किसनो पुछन जाओ बरनाम बरन नाम पावनी जे किसे वड्डा करे बड़े हथ बड़ियाइया जय पावै तैं दे हुक्म सवारे अपना चसा नाम ढिल करे सब को आखी बहुत महुत लैने कै विचार केवन दाता आखिए देकै रिहा सुमार नानक टूट न आवई तेरे जुगे जुगे भंडार महला पहला सबे कंत महलियां सगलियां करै सिंगार गणत गणा बनवाई आ सूहा वेश विकार पाखंड।

बलिहारण दर सच्ची सचियार सी चाने ज्यों पंखिया जाली बदक हाथ गुर राखी से उबरे होर फाथे चुग गए साथ बिन्नावे चुन सुटिया कोई ना संगी साथ सचो सच्चा आखिया सच्चे सच्चा थान जिनी सच्चा मन्या तिन मन सच त्यान मन मुख सूचे आ जानी है गुरमुख जिना ज्ञान सतगुरु अगे अरदास कर साजन दे मिलाए साजन मिलिए सुख पाया जमदूत मुए बिख खाए नावै अंदर हों बसा नाओ बसे मन आए बाज गुरु गुबारो है बिन शब्दे बूझ न पाए गुरमति प्रगास हुए साचर हे लिवलाए तिथे काल न संचरै ज्योति ज्योत समाए

गुण संग पुले पुले थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन में भुली जे फिरा बिन गुर बूज ना पाओ नावो भुली जे फिरा फिर आओ जाओ पुछो जा

मन मकबूज ना होए, सुख दुख सम कर जानी है, शब्द भेट सुख होए, वेद पुकार है वाची है, बाणी ब्रह्म व्यास, मुन जानो सेवक साधका नाम रति गुणतास, सच रति सी जन गई, खौं सद मलिहारे जास, चौं जुग मेले सब मल भरे, जिन मुख नाम न होए, भगती भाए विहूणिया, मूह काला पत खोए, जिनी नाम विसारिया, अवगुण मुठी रोए, खोजत खोजत पाया, डर कर मिले मिलाए, आप पछाणे घर वसे, होमे तृष्ण जाए, नानक निर्मल उजले, जोर तराते हरनाए, श्री राग महला पहला, सुन मन भूले बावरे।

सुमा तिस के संग मिलाओ, तिस बिन कड़ी ना जीवो, बिन नावे मर जाओ। सतगुर नाम न पाईए, बिन नावे क्या सुवाओ। आए गया पछतावना, ज्यो सुंजे करकाओ। बिन नावे दुख देहोरी, ज्यो कलर की पीत। दब लग तब लग महल न पाईए, जब लग साच न चीत। शब्द रपै कर पाईए, निर्वाणी पद नीत। हों गुर पुछो अपने, गुर पुछ कार कमाऊ। शब्द सलाही मन वसे, होमें दुख जल जाऊ।

सर्व प्यार मुक्त पदार्थ पाईए अवगुण मेटनुहार। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो ब्रह्मे नारद वेद व्यास कोए। रहाओ ज्ञान ध्यान तुन जानिए, अकथ कहावे सोए। सफलियो बिरखन आवला छाव कनेरी होए, लाल जवे हरमान की गुर भंडारे सोए। गुर भंडारे पाईए निर्मल नाम प्यार, साचो वखर संचिए पूरे कर्म अपार। सुखदाता सुखदाता दुख मेटनो सतगुर।

श्रृंगार करहि सो फिर पाया गुर कै हित अपार। गुर की सेवा चाकरी मन निर्मल सुख होए, गुर का शब्द मन वसिया होमे बिचों खोए। नाम पदार्थ पाया लाभ सदा मन होए, कर्म मिले ताम पाइए आपना लिया जाए। गुर की चरणी लग रहो बिचों आप गुवाए, सच्चे से तीरतिया सचो पल्ले पाए। भुलण अंदर सब को अफुल गुरु करतार, गुरमत मन समझाया लागा तिसी प्यार। नानक साच न बिसरै मिले शब्द अपार। श्री राग महला पहला

संसार मोठ गोली हो मुई सावरते संसार। मेरे प्रीतमा मैं तुझ बिन अवर ना कोए, मैं तुझ बिन अवर ना पावई, तू पावई सुख होए रहाओ। नाम सलाही रंग स्यों गुर कै शब्द संतोख, जो दिसै सो चलसी कूड़ा मोह ना वेख। वाट वटाओ आया नित चलदा साथ देख, आखण आखे की तड़े गुर बिन बूज न होए। नाम बड़ाई जी मिले सच रुपै पत होए, जो तुद पावै से भले खोटा खरा ना कोए। गुरसरनाई छुटी है मनमुख खोटी रास, अष्ट धात पातशाह की घड़िए शब्द विगास। आपे

बिरले को सोजी पई गुरमुख मन समझाए, नानक नाम न बिसरै छूटे शब्द कमाए। श्री राग महला पहला, चेते इंद से धौल हर बगे बंक नुआर, कर मन खुश

पवने कै वस देहोरी मस्तक सच निशान बहुता जीवन मंगिए मुआ ना लोड़ै कोए सुख जीवन तिस आखिए जिस गुरमुख वसिया सोए नाम बिहूण क्या गणी जिस वारु गुरु।

रूपा संचिए, माल जाल जंजाल सब जग में दोही फेरिए, बिन नावे सुरकाल पिंड पड़े।

मुकाम पंडित वखाणे पोथियां सिद्ध भै देव स्थान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन शेख पीर सलार दर कूच कूचा कर गए अवरे पी चलनहार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोहत के चलना दिल समझ तू पे पहुंच बादशाह माहे वखाणिए बिरला तांबू जै कोए नानक वखाणे बेनती जल थल महील सोए अल्लाह।

जाए, नाम निधान हर मन वसै, होमे दुख सब जाए। सतगुरु शब्द सुनाया हौ सत बुलिहारे जाऊ, अपने मन चित कहे कहाए, बिन गुर आप न जाई। हर जियो भगत।

जम डंड लगे तिन आए, जे सतगुर सेवन से उबरे हर से तीले बलाए, मन रे गुरमुख नाम ते आए, तौर पूर्व करते लिखिया तिना गुरमत नाम समाए, रहाओ बिन सतगुर।

सोहंदे जिन कृपा करे करतार नानक दाता एक है दूजा और न कोए गुर प्रसादी पाई है कर्म प्राप्त होए श्री राग महला तीजा पंखी बिरक सुहावड़ा सच चुगे गुर पाए हर रस पीवे सहज रहे उड़े न आवे जाए निज

ब्रह्म के बेते शब्द पछाणे होमे जात गवाई सुर नर तिन की बाणी गावै कोई न मेटै भाई दैत पूत गदैत पुत कर्म धर्म किच संजम न पड़ै दूजा पाउ न जाने सतगुर भेटिया निर्मल हुआ आंदन नाम बखाणे इको पड़ै इको नाम बूझै दूजा अवर न जाने खट दर्शन जोगी सन्यासी बिन गुर परम पुन्ना पुलाए बिन गुर परम पुलाए सतगुर सेवै तां गत मित पावै हर जीव मन वसाए सच्ची बाणी स्यों चित लागै आवन जान रहाए पंडित पड़पण वाद वखाणै बिन गुर परम पुलाए लख चौरासी फेर पापिया बिन शब्दे मुक्त न पाए जां नाउ चीते तां गत पाए जां सतगुर मेल मिलाए सत संगत महै नाम हर उपजै जां सतगुर मिले मिलाए जां सतगुर मिले सुभाए मन तन अर्पी आप गवाई चला सतगुर पाए सद मलिहारी गुर आपने बिचों जे हर सेती चित लाए सो ब्राह्मण ब्रह्म जो बिंदै हर सेती रंग राता प्रभ निकट वसे सबना काट अंतर गुरमुख मिले जाता नानक नाम मिले बड़ियाई गुर कै शवन पछाता श्री राग महला तीजा सहजे नो सब लोच दी बिन गुर पाया ना जाए पढ़ पढ़ पंडित जोत की थके भेखी भरम भुलाए गुर पेटे सहज पाया अपनी कृपा करी रजाए भाई रे गुरबिन सहज न होए शब्दे ही ते सहज उपजे हर पाया सच सोए रहाओ सहजे गाव्या थाए पवै बिन सहजे कथनी बाद सहजे ही भगत उपजै सहज प्यार बैराग सहजे ही ते सुख शांत होए बिन सहजे जीवन वाद सहज सलाही सदा सदा सहज समाद लंगाए सहजे ही गुण उच्चरै भगत करी लिवलाए शब्द

वार तुम व्यर्था जन्म गवाया मर जम्मै वारो वार। एह जग जलता देख कै भज पै सतगुर सरना सतगुर सच निड़ाया सदा सच संजम रहना सतगुर सच्चा है बोही था शब्दे भवजल तरना लख चौरासी फिर दे रहे बिन सतगुर मुक्त ना होई पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके दूजे भाए पत खोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए सो सच लगे नित सच्ची कार करन तिना निज कर वासा पाया सच्चे मैल रहन नानक भगत सखिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राग महला पंजवा जा को मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मन साक पे भज खले सबो पजे आसरा चूके सब असराऊ चेत आवे उस

तानिमक सिमरत तरिया शास्त्र सिमरत वेद चार मुखागर बिचरे तपे तपी सर जोगिया तीर्थ गवन करे खट

नारी, सन्यासी ब्रह्मचारी, उदासी उदास राता, भगत नवै प्रकारा, पंडित वेद पुकारा, गृहस्थी गृहस्थ धर्म पर धर्माता, एक शब्द

निस्तार जीव सतगुर मिलिया जानिए जित मिलिया नाम वखाणिए सतगुर बाज ना पायो सब थकी कर्म कमाए जीओ।

मस्तक तार जीव सब संजम रहे सियाणपा मेरा प्राण सब किछ जानदा प्रगट प्रताप वरतायो सब लोग करे जयकार जियो मेरे गुण अवगुण नाम विचारिया प्रभ अपना बिरद सुमारिया कंठ लाए कह रखियो लगे ना तत्ती वाओ जियो मैं मन तन प्रभु ते आया जिये जिये छड़िया फल पाया सह पातशाह सिर खसम तू जप नानक जीवे नायो जियो तुद आपे आपे उपाया दूजा खेल कर दिखलाया सब सचो सच वर्तंदा जिस भावे तिसे मुझाए जियो गुर प्रसादी पाया तिथे माया मोह चुकाया कृपा करके अपनी आपे लय समाए जियो गोपी ने गुआलिया तुद आपे गोए उठा लिया हुक्मी भांडे साजिया तू आपे भन सवार जियो जिन सतगुरु

नानक सच्ची बेड़ी चार जियो, सब सृष्ट सेवे दिन रात जियो। दे कान सुनो अरदास जियो, ठोक मजाए सब डिठियां, तुसे आपे लायन छंडाए जियो।

पूर्ण मेरिया, देव दर्श सुख दातिया, मैं गल में चलो मलाए जियो, तुद जीवन अवरना पालिया, तू दीप लोह पालिया, तू थान थनंत रब रिहा, नानक भगतान साची उधार जियो, हो गुसाई दा पहल वानड़ा, मैं गुरमिल उच दमालड़ा, साव

सतगुर प्रसाद श्री राग महला पहला पहरे कर पहला पहले पहरे रहन की बनजारिया मित्रा हुक्म प्यंग वास और ताप अंतर करी बनजारिया मित्रा खसम सेती अरदास।

कटै दिन आए, अंत काल पछतासी अंदले जहां जम पकड़ चलाया। सब किसे अपना कर कर राखिया, खिन में पिया पराया। बुद्ध विसर्जी गई सियाणप, कार्य अवगण पछता।

धन संच वै मणजारिया मित्र हर नामा हर ना समाल हर नामा हर हर कदे ना समाले जे होवै अंत सखाई ए तन संपै माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई।

मूल न करिहु जित अस्थिर जुग जुग होवो हर सेती सद मानो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सत गुर स्वामी भेद ना जानो जित मिल हर भगत सुखांदी कहो नानक प्राणी चौथे पहरे सफल हो रैन भगतान दी श्री राग महला पंजवा।

या बनजार या मित्रा कर मुहलत कर्म कमाहे मुहलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया।

लिखया आया पकड़ चलाया मन मुख सदा दोहेले जिनी पूरा सतगुर सेवया से दरगे सदा सुहेले करमी कर्म तरती शरीर जोग अंतर अंतर जो भी बोवै सोखात कहो नानक भगत सोहेंद्र वारे मन मुख सदा पावात। श्री राग महला चौथा कर दूजा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मोंद आणी पैड़ै क्यों कर हर दर्शन पिखै हर हर अपनी कृपा करे गुरमुख सौड़े कम सिखै सौड़े कम सिखी गुरमुख हर हर सदा त्याए सैया विच फिरे सुहेली हर दरगे बहां लुड़ाए लेखा धर्म राय की बाकी जप हर हर नाम किरखै मोंदे आणी पैड़ै गुरमुख वर दर्शन दिखै ब्याह हुआ मेरे बावला गुरमुखी हर पाया अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान प्रचंड मलाया बलिया गुर ज्ञान अंधेरा बिनसिया।

गुरु चलंदी जुग जुग पीढ़ी चलाए जुग जुग पीढ़ी चले सतगुर की जिने गुरमुख नाम ते आया हर पुरख ना कभी बिनसे जावे नित देवे चढ़ी सुवाया नानक संत संत हर एको जप हर हर नाम संदेही नाम सुहंदी हर राम राम मेरे बावला पिर मिल धन वेल वधंदी श्री राग महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन प्यारिया जीओ मित्रा गोबिंद नाम समाले मन प्यारिया जी मित्रा हर निभे तेरे नाले संग सहाई हर नाम ते आई बिरथा कोई न जाए मन चिंदे से फल पावे चरण कमल चित लाए जल थल पूर रहा बनवारी घट घट नदर निहाले नानक सिख दे मन प्रीतम सार संग प्रभ जाले मन प्यारिया जी मित्रा हर बिन झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्र मित्रा बिकसागर संसारे चरण कमल कर बोहित करती सहसा दुख नाम व्यापे गुरपुरा बेटा वरपागी आठ पहन परम जापै आठ जुगादि सेवक स्वामी भगता नाम आधारी नानक सिख दे मन प्रीतम बिन हर झूठ पसारे मन प्यारिया जी ओ मित्र हर लदे खीप संभाली सबली मन प्यारिया जी ओ मित्र हर दर्शने चिल मल्ली हर द्वार सेवे अलखे पीवै न चलो आसन पाया तह जन्म न मरण न आवन जाना संसार दुख मिटाया चित्र गुप्त का काग दुफारिया जम दूता कछु न चली नानक सिख दे मन प्रीतम हर लै लदे खीप सबली मन प्यारिया जियो मित्रा कर संता संग निवासो मन प्यारिया जी ओ मित्रा हर नाम जपत प्रंगासु सिमर स्वामी सुखै गामी सगले सगल गामी इच सगली पुनिया पुरबे कमाए श्री रंग पाए हर मिले चिरी विशुनिया अंतर बहार सर्वत रविया मन उपजया विश्वासु नानक सिख दे मन प्रीतम कर संता संग निवासु मन प्यारिया जियो मित्रा हर प्रेम भगत मलनीना मन प्यारिया जियो मित्रा हर जल मिल जीवे मीना हर पी अगहने अमृत माने सर्व सुखा मन उठे श्री धर्म पाए मंगल गाए इच पुनी सतगुर तुठे लाडली ने लाए नौ निध पाए नौ सर्वस ठाकुर दीना नानक सिख संत समझाई हर प्रेम भगत मन लीना श्री राग की संत महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद डखना हठ मजाहो मां प्री पसे क्यों दीदार संत सरनाए लबने नानक प्राण आधार संत चरण कमल सो प्रीत रीत संतन मन आवै जियो दुतिया पाओ बप्रीत अनीता दासा न भावै जियो दासा नह भावै बिंदर सावै एक खिन धीरज क्यों करै नाम बिहूना तन मनहीना जल बिन मछली ज्यो मरै मिल मेरे प्रीत प्यारे प्राण आधारे गुण साध संग मिल गावै नानके स्वामी धार अनुग्रह मन तन अंक समावै डखना सुहंदड़ो हाफ उठाए कोई ना दिसे डूजड़ो खुलड़े कपाट नानक सत गौर भेट ते संत तेरे बचन अनूप अपार संतन आधार बाणी विचारी है जियो सिमरत सास ग्रास पूर्ण विश्वास क्यों मनो सारी है जियो क्यों मनो सारी है निमख नहीं टारी है गुणवंत प्राण हमारे मन बांस तो फल देत है स्वामी जी की बिरथा सारे।
अनाथ के नाथी सर्ब कै साथी जप जुए जन्म नहारी है नानकी बैनंती प्रपै कृपा कर भवजल तारी है दखना धूड़ी मजन साध खेक साई थिए कृपाल लदे हफे थोकड़े

दस चार हट तुद साजिया वपार करी वै तिकना नू लाभ दे जो गुरमुख थी वै तिन जम काल ना व्यापई जिन सच अमृत पी वै वे आप छुट्टी परिवार स्यों तिन पिछे सब जगत छुट्टी वे सलोक महला पहला कुदरत करके वसिया सोए वक्त मिचारै सो बंदा होए कुदरत है कीमत नहीं पाए जां कीमत पाए तां कही न जाए सरै सरियत करै मीचार बिन बूझे कैसे पावै पार सिदक कर सिजदा मन कर मकसूद जै तिर देखां तै तिर मौजूद महला तीजा गुर संभाए न पाई ना नेड़े ना दूर नानक सतगुरु ता मिलै जा मन रहे हदूर पौड़ी सप्त दीप सप्त सागरा नव खंड चार वेद दस अष्ट पुराणा हर सवना विच तू वरतदा हर सवना पाणा सब तुझे त्यावै जी जांत हर सारग पाणा गो जो गुरमुख वारिया रात दे तिन्हो कुरबाणा तू आपे आप मरतना कर चूच बनाणा सलोक महला तीजा कलो मसाजनी।